0: 레그줄엔 센디나 시그나 가진 특급된 찍 듣습니 그 섬든 능아든 특급된 찍 듣습니 그 섬든 찍 특급된 찍 듣습니 그 낙섬 특지 그 켈마 카프리온고 특급된 찍 듣습니 그 섬든 능아 특급된 찍 듣습니 그 섬든 찍 특급된 찍 듣습니 그 낙섬 특 야도 보초디 뭐이나 왜 아쿠가 왜
1: 아쿠가
0: 아쿠가 토포
1: 고가
0: 추테니 다스득 지게드 마샤기야 카프가 다스득 지게드 마샤가 나니 사우즈 마쿠기야
1: 야
0: 아쿠가 अरे तो बना बगीचों कपड़े अंदर तंग ना यों दार्तगरे तो शासा दार्तगरे तो तो ये तो टेंबो इंसा वो चंद मेसा तो मोड़ के कपड़े तंग जो ना हाथ का चेंबो रुक चुलों जब भी तंग का जान बंदी ना तो फो मंगा शिक मत्थब नो के चेंगे यों दार्तगरे तो मसानी कपड़े अंदर के Я не знаю, что будет гахчик и капер на нели. Я тут почему дымой на. Вы? Вы тут почему дымой на.

Pachatang gyebche, ayangche te perdurji tsakhsire, anachi khsibu dhichusubu kukuri. Unlu jachu tukshan zhentashahdi, kongga tkhsisi chirwa, ayi chindzang lozang tsirang gunu, nda takhtuuri, nda katanga gongpa zhugze tato katanga xaxa dinkanga khtu, ayangche te perdurji kanyari khtu, ndi yabar. Tujia lama rinchen, ayangche te perdurji, kanchen nga nga nyancho, ᱡᱮᱵᱩᱥᱴ ᱠᱚᱞᱚᱫᱚ ᱛᱟᱱᱡᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤᱪᱷᱟ ᱪᱚᱠᱚᱞᱚᱫᱚ ᱪᱷᱟᱴᱢᱥᱚ ᱥᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱢᱟᱥᱤ ᱡᱤᱣᱟᱛᱚ ᱥᱚᱱᱪᱚᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱩᱥᱤᱛᱮ ᱟᱹᱨᱤᱜᱱᱤ ᱥᱢᱛᱟᱜ ᱛᱟᱠᱥᱟ ᱧᱟᱭᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱡᱚ ᱥᱚ ᱯᱚᱪᱟᱛᱟᱞ ᱦᱟᱡᱤᱨᱚᱫ ᱜᱚᱠᱟ ᱪᱚ ᱩᱱᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱠᱩᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩᱠᱯᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟᱣᱟ ᱠᱟᱨᱴᱤᱱ ᱴᱮᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱛ ᱥᱤᱛᱤᱠ ᱡᱤᱜᱫᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱩᱨᱩᱝ ᱪᱷᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱵᱟᱴᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱱᱛᱮᱱᱫᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱩᱛᱠ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱜᱟᱪᱤ ᱜᱟᱪᱤ ᱱᱤᱛᱤ ᱠᱷᱥᱟᱝᱜ ᱥᱩᱫᱟ ᱥᱮᱞᱚᱱ ᱨᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱡᱤᱴᱮᱝ ᱪᱷᱟᱛ ᱩᱨᱩ ᱡᱤᱜᱫᱤᱱᱟ ᱥᱤᱛᱤᱠ ᱡᱤᱜᱫᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱡᱤᱜᱫᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱮᱱᱟ ᱯᱷᱟᱱᱫᱤ ᱠᱮᱱᱡᱚ ᱡᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱥᱞᱤ ᱨᱤ ᱠᱤᱱᱩᱱ ᱫᱚᱛᱮ ᱪᱷᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤ ᱡᱤᱢ ᱪᱷᱟᱛᱟᱱ ᱵᱮᱯᱤ ᱛᱷᱚᱠᱷᱮ ᱪᱷᱤ ᱡᱟᱥᱤ ᱡᱮᱱ ᱪᱚᱞᱟᱱᱟ ᱪᱷᱤᱛᱨᱤ ᱡᱤᱜᱩ ᱫᱩᱛᱠᱤᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱛᱟᱣ ᱪᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱱᱛᱚ ᱪᱮᱱᱟ ᱠᱤ ᱱᱚᱨ ᱫᱚᱯᱟ ᱛᱟᱨᱟᱱᱫ ᱟᱹᱧᱟᱹᱝ ᱠᱟ ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱥᱩᱡᱤ ᱜᱚᱞᱟ ᱠᱟᱭᱜᱟ ᱫᱮ
ཁྱི ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ
디도 탐교시 탈통도 아 니 탐교시 끝나마 끝마 아디 기시를 붙이 전거 틀어요 저들은나 히르 니마 바비 오는게 이즈네 구가데 히르 니마 바비 오는게 찬르 르니 아남시 촌강와드네 찬르 르니 아남시 촌강와드 Jigtena di zhen ren bi la na me zene. Jigtena di zhen ren bi la na me. Di zhen ben bong zho jiu zhok bu ta. Da wo jiu ngi zhe tong tong zhe. Ngi zhe zhe na zhong nil xie pa zhe. Da qe pen do bi ten qi ji chan shang te zhe. Deng seng ge ga jai na ka shang te zhe gu no. Di zhe. ये कंचन जे केच दा टूपी टंकी संचवा द तजन जे हेनान शिल किचो सिदी शालों की शावान दे ये दे दे सद शालों ही सोंदों गे जेंसेन चे ना संचवा द तजन जे के जोंग जेवा गे थोने वदो जेना जेवा लाना मे पा जो ओं रेन दा तासंग चोये ते चेवा tamu yinpi chani ta sada zangu sonda zhishi datana panpa yu nu niga uzu tamban zambala gawa tau niwa yu nu di jin tsanta shi sada xialong zin di mato kutanga sada dhani chanu gu nang to ma re uchun ya tome xialong zina lukho tome gan dhani chanu gu nang to ma nu hui di jin tsar Sada xialong zanara sada gan dhani tunu ma. Xia xialong gunu sada ga gongpa zhishi pi chani sada xialong zhi. Guwa sada ga gongpa zhishi pi chani sada xialong zhi. Da hui jia ga nyan doji tato ra uro jinshi ri xina sa. Shina niki tamung ga jangshir jiwe
ten